0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सुन्दा हुँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: ओहो आज डाई नै मजा लागठो मजा से दवाई करेला कहटो।
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफारकैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
1: ए बाट ठिक कैलो साच्ची कि अस्पताल म का सुविधा मिलत त?
2: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
1: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
3: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु। कहाँ जाँदा राम्रो होला?
4: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ। पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ। त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ। अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
3: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
4: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
3: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97-6-39-11-786 र 98-224-92-377।
5: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
1: खुसीके खबर, खुसीके खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा।
1: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज। सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 ओ 98-482-80-465।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेन्स
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840213680
4: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतु
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
4: ए बात तो ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
5: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
4: ए ओसिनो कला से उहाँ जाइ मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
4: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत ओत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
4: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
5: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9984206697 9985823697 वो 9914386697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
3: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
5: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
6: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
5: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
6: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
5: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
4: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
5: नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगंज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्ण एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया।
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या। कार्यक्रम घर अंगना।

0: हमार सखी नमस्कार।
1: हाँ, हमार सखी नमस्कार।
0: खाली आपक नहीं कहें, सब कोई हमार सखी नमस्कार।
1: अरे तो हम अब हमार कहे हो तो, अरे तो हम कुछ कहा है? हम कुछ कहा तो नहीं है। अब सब लोग सखी हुए हैं ना, हम भी सखी हैं, आप भी सखी हो, हमार के मतलब सब कोई आई गए। ठीक है, हम का लगा कि आप हमीन का खाली कहे हो का ये मारे
0: वही गवा
1: नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात, सबका समेट के चले पड़ा थे ना।
0: तो वही में सद्भाव के बात करा जाए भाई, सबका समेट।
1: अरे तो हम अपने आपका खाली कहाँ कहे थे,
0: तो बोल ही नहीं दे। तो आज बात का है, आज लगा तो सके करेला खाए के आई हो।
1: करेला?
0: हाँ
1: करेला नहीं खाए।
0: नहीं खाए हो तो नीम खाए हुई हो?
1: नीम भी नहीं खाए।
0: तो फिर ज्यादा मिर्ची खाए के आई हो आप?
1: कुछ नहीं।
0: तब कहे इतना लाल लाल हो आप?
1: लाल है? अच्छा तो हम लाल है ना। हाँ। और आपका पीला होगा
0: तो
1: आप भी तो लाल हो।
0: हाँ, तो कहो आपो खाए के आई।
1: हाँ अब लेकिन जो चीज हम खाए तो शायद आप भी खाए हो। हाँ। अब का खाए ना, अब हम का बता दी, लेकिन खाए हैं तो वो चीज आप भी खाए हो तभी आप भी लाल लाल हो।
0: हाँ लेकिन लाल के बात ही है श्रोता कि मिर्ची खाए से लाल ना है, कि इस साइड के माहौल का है। आप लोग जाना चाहते कि कौन त्योहार आया?
1: हाँ वही बात है,
0: तो त्योहार के वजह से ज्यादातर लाल की माँ बाहर रहा था,
1: खाए वाला का रहा था दर
0: दर। तो दर के कार्यक्रम तो अब थोड़ा बहुत इस आपसिक साल थोड़ा वो हो गवा है, समस्या के घेरा में रहा है। फिर भी हम लोग के जो त्यौहार आवत है वार्षिक त्यौहार, अभी त्यौहार साल में एक बार आवत है, तो यही मारे अब आए वाला आप लोग का जाना जात हुई कि यही सोमवार आए वाला कजरी तीज है। हम लोग के हिंदू पर्व में कजरी तीज सुहाग का तीर है नी, भोलेनाथ हाँ। के व्रत रहा थे माता पार्वती, बड़े कष्ट से कजरी तीज के व्रत करीन है जो भोलेनाथ का पैन है। तो ये व्रत आए वाला यही सोमवार के कजरी तीज है। और उसके साथ साथ सखी और भी एक व्रत है, उसके दूसरे दिन का है ऋषि पंचमी।
1: ऋषि पंचमी है।
0: तो हम लोग इस सारे बर्तन के बाद फिर आवा जी शनिचर के। तो आज हम लोग वही के सब समेट के जो हम लोग के अपने कल्चर माँ परंपरा माँ कौन तरीका से हो थे, कि काहे हो थे व्रत, काहे उपवास करा जाते, और इनके चलन चलती का है, कैसे हम लोग करा जाते व्रत उपवास के बारे में इके जानकारी दिन जाए है नी सके। और साथ ही संपूर्ण श्रोता आप लोग कान खोल के बैठ जावा जा, 3 बजे तक हम लोग के साथ दिया जाए। और सखी आप लोग भी बैठ जावा जा, कान जरूर सफा कर लीन जाए, काहे से हमार सखी भी आज लाल मिर्ची लाल लाल हैं, हमू हन, तो क्या पता दोनों जना ज़्यादा तनी गरम गरम बातें हो, अब शुरुआतें में हुई वो आप लोग सुन लिया गा हुई है नी, तो क्या पता 3 बजे तक तनी आप लोगों का सुने पड़े, तो बढ़िया से कान सफा करके बैठा जाए। और आप लोग का कार्यक्रम घर अंगनामा स्वागत है।
1: स्वागत है। हाँ तो सखी हम लोग जो है आप हम लोग अपने ही बात करा जाते हैं ना, कुछ बता दिया जाए कि प्रोग्राम कहाँ से कै बजे?
0: हाँ तो सकी तनी आपको बता दी जाए कि प्रोग्राम कहाँ से,
1: और कुछ भूलत तो नहीं हो सकी आप?
0: नहीं कुछ भूलित तो नहीं,
1: इशारा भी सुने नहीं रहो का शुरुआत में?
0: इशारा तो सुने रहे, फिर भी आप बता दो कि आज कुछ महीना के अंतिम दिन है, कहा लागत है
1: ले अब बताते हो, फिर कहा तो कि लागत है,
0: अब तो फोन
1: अब लागे वाला
0: फोन के घंटी बीच बीच में बाजत है। हाँ। है नी, और महीना के अंतिम शनिचर में हम लोग हन, और आज कजरी तीज के उपलक्ष्य में बातचीत पर देख
1: लो बाज गवा,
0: तो चला जा हम लोग शुरुआत करा जाए, श्रोता आते मेहनत से फोन करा थे, स्वागत करा जाए।
1: हेलो
0: हेलो हेलो नमस्कार। हेलो
2: जी बहन जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी, आपके शुभ नाम कहाँ से?
2: श्री गांव से भद्रा सिंह शेरपाली।
1: अच्छा भद्रा सिंह
0: सखी हमारे ही मारे हम तनी तनी छुपाए गए इनकी सखी कहीं ना कहीं चीन जाइए। हाँ तो आपके क्या हाल चाल?
1: नेमी श्रोता हुए सखी भद्रा जी, कार्यक्रम में फोन किया करत रहे ना।
0: अच्छा।
1: और अभी भी करा थे, इसी बात नहीं आज भी करीन करा था।
0: हाँ, तो स्वागत करा जाता आप लोग का। हाँ। कार्यक्रम घर अंगनामा, और आपके क्या हालचाल है?
2: बढ़िया है बहन जी।
0: तो आज के कार्यक्रम में आप पहला हमारे श्रोता हो कि आप लोगों के फोन हम लोग रिसीव करा गया है, और आज के कार्यक्रम घर अंगनामा हम लोग कजरी तीज के बारे में बातचीत करा जाते है। तो कजरी तीज के आपका भी शुभकामना, आपके घर परिवार का सबका, दीदी बहनी सबका शुभकामना है।
2: ठीक है, आप लोग का भी, आप दोनों बहन का भी हम शुक्रिया करते हैं।
0: धन्यवाद है।
1: धन्यवाद।
0: तो आपका कार्यक्रम में घर अंगना आपका कस लागत है, थोड़ा आप जानकारी दीन जाए, प्रतिक्रिया दीन जाए कि हम लोग और का सुधार करा जाए। मैं
2: बढ़िया बहन, दोनों दोनों बहन आओ तो शनिचर के दिन में।
0: हाँ। तो ठीक है, ऐसे
2: बढ़िया कार्यक्रम सुनी थे।
0: तो ठीक है, ऐसे कार्यक्रम सुनते रहा जाए, हमारे लोग के साथ दिया करा जाए, और कार्यक्रम में कोई भी समस्या या कोई सलाह सुझाव देखो तो बेहिचक आप लोग दे सका जाते है।
2: नहीं, कार्यक्रम तो बढ़िया लगा थे
0: जी,
2: लेकिन आप चंदा बहन के हम बोले थे।
0: हाँ, ये कार्यक्रम नहीं चलावत है, और कार्यक्रम नहीं चलावत है।
2: कार्यक्रम आओ, कौन बार आवत है?
1: आए कौन कौन बार आवत है? सुनत तो हो ना भद्रा जी, बतावा जे आपे कौन कौन दिन आवत है।
0: अभी सब कार्यक्रम
2: आपके निजी कार्यक्रम,
1: निजी कार्यक्रम तो प्राइवेट कार्यक्रम
2: लेके आओ।
1: ठीक है भद्रा जी,
2: आप दोनों बहन आवत हो।
1: हाँ।
2: तो आपका निजी कार्यक्रम कहाँ छोड़ दियो?
1: हमार निजी कार्यक्रम निजी कार्यक्रम छोड़े नहीं है भद्रा जी, जल्दी आवा जाए, बस कोई अब ऐसा हो जाते का समस्या हो जाते तो थोड़ा वैसे हम दोनों बहन आए हैं आपके, है ना?
0: ये कार्यक्रम के यहाँ के जिम्मेवारी ज़्यादा ले ली नहीं भद्रा जी, ये हमारी प्राप्तिक में ड्यूटी ज़्यादा देती, तो आप अपन जो व्यक्तिगत इनके निजी कार्यक्रम रहा है इमा आलस करे लागी, कहीं ना सखीन के साथे खाली चलाई, सखी के साथे रहा जाते तो बत कहीं मैं समय कट जाते, बढ़िया लागत है। इमारे छोड़ दी ही नहीं,
1: नहीं छोड़े नहीं है, नहीं ऐसे सखी मेरे के ना कहो छोड़े नहीं है। अब कहा है कि ना भद्रा जी, अब निजी निजी जैसे अब अपने निजी मकान की का नहीं पसंद रहा था, सबका पसंद रहा था ना, तो निजी मकान में तो जेबे कर तो बस यही बात है, अब कोई विशेष कारण बस नहीं आए पाए हैं, मगर कोशिश करा जाए आवे खातिर जल्दी ही जल्दी।
2: तो आप बड़े बड़ी उसमें चले गए हो, किरोने तो अड़कावा है, हम कहा
1: हड़का
2: चंदा के कहा भगा दियो, बोल के हड़कावा है किरोनिया के।
0: ये बात है।
1: अच्छा
0: ठीक है, तो ये कोशिश करी है, और अब से बजे वाला गीत आप किका किका सुना चाह रहा था, आप कौन सा गीत सुने चाह रहा था
2: बतावा?
1: अच्छा भद्रा जी एक बात बतावा जाए, आप जो है कबूतर कितना उड़ावा जाते जब देखो तब कबूतर जा, और कोई गाना
0: आप जैसे उनका पसंद है
2: दोनों बहन आए जाओ हमारे घर में भी है यार, बगल वाला घर भी बहुत कबूतर पाला।
1: अच्छा आप जान पाए ना आप कबूतर वाला काहे गाना सुन जाते, आप जितना कबूतर पाले हो ना उका उड़ावे जहा जाते आप, है ना? वही मारे कहा तो आप जा जा कबूतर उड़ जा, है ना?
0: नहीं बात सही है, लेकिन पहले के जमाना में कबूतर से ही चिट्ठी पत्र भेजा जाता था, खबर हाँ, भेजा जाता
1: वही बात है।
0: लेकिन
1: लेकिन सखी भद्रा जी जो है ना, अब कबूतर उनके ज्यादा है ना, इसके वजह से उड़ाई उड़ाई के उका आजाद करत है। ठीक है,
2: देख लो कबूतर कितना पाले हैं।
1: ठीक है भद्रा जी, जरूर आवाज तो भद्रा जी कार्यक्रम में फोन किया गाय के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुझाव भी याद दिया।
0: नमस्कार
1: नमस्कार
2: नमस्कार
1: नमस्कार। तो सखी ये तो रहे भद्रा जी।
0: हाँ, अब लेकिन अब हम लोग चला जाए कैसे, आपके विज्ञापन ब्रेक टाइम आवत हुए कैसे आपके मुंह देखे भी जान मिलत है कि आपके ट्रेन छूटे वाली है,
1: मतलब हमारे बोले से पहले आप पता हो ही गया
0: है छूटे वाली है। अब जैसे हम कुछ कही भी सकी, अब कबूतर जा जा अगर सुना जाए तो आप कहियो कि सकी थोड़ी देर रुक जाओ, तो हमारे हम थोड़ी देर रुक जाओ जा कैसे बोल,
1: नहीं अब ना रुका जाए सकी, अब चलो फिर के बाद कबूतर भी तो उड़ावे है।
0: ए बात है, तो फिर चला जाए और
3: दाई धेरै समय देखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु, कहाँ जाँदा राम्रो होला?
4: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ, पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ, त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ, अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ।
3: हो र, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई?
4: सुन, त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन, सेतो पानी, महिनावारी गडबडी, गर्भवती जाँच, पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ, र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, थाइराइड, पित्त थैली, गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि।
3: हजुर, मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा। सम्पर्क नम्बर 97639711786 र 98224392377।
5: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य।
6: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
7: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
6: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
7: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
8: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
6: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
7: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
8: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98164169।
9: नमस्ते दाई।
10: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
9: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
10: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
11: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
12: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
13: हाम्रा विशेषताहरू:
12: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
13: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
12: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
13: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
12: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबिएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
13: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
12: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
13: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% विशेष छुट सेवा।
12: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
13: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
14: रङ बहार, रङ बहार,
15: बर्जर सँगै उपहारै उपहार, बम्परमा यामाहा रेजियर।
14: बर्जर पेन्सले घर रङ्गाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
15: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रङ्गाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
14: बर्जर पेन्स।
16: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेन्स
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने दाँत भर्ने दाँत निकाल्ने दुखेको दाँतको जराको उपचार खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत आउने पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेँलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
4: फोन नम्बर 081-532-375 नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजिसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा
3: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने किरा लागेको दाँतलाई भर्ने दाँत निकाल्ने दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
5: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451
6: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ
6: हो र यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि
7: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु पिआइसियु आइसियु हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन् अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि
6: सम्पर्क नम्बर 081-535-717
8: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जात है यतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-480-2697 98-580-2697 और 98-014-83-697
10: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए
2: नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: हाँ सखी।
1: हाँ सखी।
0: तो जो है आज तो फोनिंग कार्यक्रम है, तो एक बार जो है फोन नंबर भी बताया दिया जाए साथी लोगन के, ये है ना?
1: ठीक है, बताए दिन जाए। और सही बात है, आज बहुत चीज गबड़ा गुबड़ा है, सब
0: कोई साथी है देखा जाए।
1: ठीक है।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार
0: जी, को कहाँ से?
2: नमस्कार, हम शिव कुमार पाठक रामनगर छात्र।
0: शिव कुमार पाठक जी रामनगर से है ना? और बतावा जाए शिव कुमार जी, का हाल खबर है आपके, कैसे हो आप?
2: सब बढ़िया, हाल चाल है अपने, बतावा जाए।
0: हाँ हम लोगन के भी हाल खबर अच्छा है। तो हाँ बोला जाए।
2: हाँ बतावा जाए।
0: हाँ बतावा जाए, प्रोग्राम आप तो सुना ही जात हुई है ना?
2: बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है। तो इमा आप अपने कुछ सुझाव देख चाह जाते हैं, इससे अच्छा और कैसे बनावा जाए हम लोग?
2: लेकिन इमा विज्ञापन बहुत ज्यादा बा जाते, विज्ञापन थोड़ा कम कर दिया जाए।
0: विज्ञापन
2: बहुत विज्ञापन रहते हैं, फोन मिलाओ अब किराओ मिया जी के ऊपर लगाओ परेशान हुई जो, फिर फोन ही नहीं लगाते, टाइम खत्म हो जाते यही की वजह से।
0: अच्छा, और कार्यक्रम के बारे में कुछ बता दीजिए। कार्यक्रम अच्छा है, चलो धन्यवाद है। तो
2: जब आप लोग झगड़ा करा तो हाँ बहुत अच्छा लगा था।
0: अच्छा क्या बात है सखी, हम लोगों के झगड़ा सबका पसंद आवाते है ना?
1: अब झगड़ा ये के मारे है कि झगड़ा करते करते हम लोग भुलाए जावा जाते ना कि स्टूडियो में
0: हम लोग अपने आप से वहीं ही गुम हो जावा जाते है ना शिव कुमार जी, के वजह से रियलिटी लगे लगा था आप लोगों का है ना?
1: आप शिव कुमार जी नमस्कार,
2: बढ़िया से गाना सुना दिया जाए।
1: कौन गाना सुने चाह जाते है?
0: कौन गाना सुने चाह जाते हैं शिव कुमार जी? आप
2: गाना सुन भाई, कोठे ऊपर कोठरी पर उस पे रेल चला दूंगी।
0: कोठे के ऊपर रेल भी चलाते सखी?
1: अब वो तो आप जानो,
0: आप कहाँ जानी हो, तो शिव कुमार जी जान सकते हैं।
1: अब वो तो सुने के बाद सबको जाना जाए। और
0: तो ठीक है शिव कुमार जी, आपके पसंद के गाना हम लोग जरूर सुनावा जाए है ना?
1: और की का सुनावे के चाह जाते है कुछ?
2: सबसे पहले आपका, फिर संध्या जी का, फिर कृष्ण सर एफएम परिवार का, हमने मिले वाले साथी सत्येंद्र शर्मा, अमेरिका प्रसाद कांडू, ये सबका
1: धन्यवाद है आपका। जरूर आपके बजाय गीत सुनावा जाए। और हम लोग हमारे सखी का ढूंढे शुरू कर दी इन्हें कोठे के ऊपर कोठरी। तो धन्यवाद है आपका, ऐसे कार्यक्रम में हमेशा आप फोन करते रहा जाए, हम लोग के साथ देते रहा जाए
0: जी। नमस्कार शिव कुमार जी।
2: नमस्कार।
0: साथी हाँ, तो सखी आई तो रहे शिव कुमार जी है ना रामनगर से फोन करना है, इनका भी हमारे लोगों की लड़ाई पसंद आवाते है ना? हम लोग चाहे तो झगड़ा लड़ाई ना हो ना, वो अच्छी चीज थोड़ी ना हो।
1: हाँ, आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे झगड़ा
0: ना, हम देखो हम कोशिश करी थे बराबर खतिर
1: ना, ना, ना, आप तो अत्ता बराबर थी कि मतलब जैसे हम बोले थे कार्यक्रम में।
0: अब सखी का है ना बात ही कुछ ऐसा रहा थे कि बोले पे मजबूर हो जाए थे उनका।
1: हाँ वो थे कोई कोई,
0: अब देखो शुरुआते में आप का कहो है का खायो,
1: मतलब भड़ा सभी
0: नहीं, मतलब हम याद दिलाई थे आपका, याद दिलाई थे आप कहो कि।
1: लेकिन अब हमका लगा था प्रेशर के मशीन लेके आओ ऊपर। अच्छा। और सखी के पहले हम प्रेशर चेक भी, आप हमार भी चेक करो, जरूरी नहीं है दोनों। अच्छा। जना के प्रेशर चेक करा जाए कि भाई जैसे हम बोली थे, हमने सखी कहा थी लियो आप इका काहे कहो हो सकत है, बाद में उसका बदला थी, झगड़ा शांत करती थी अपने ना आपका समझाई लेती, फिर कहते अच्छा हो ही सकत है, ई कहे हुई हो ही सकत है, ई मारे कहे हुई हो, तो चलो कम
0: हम देखो ढूंढी तो है, मतलब उके तर्क बितर्क ढूंढी तो है कम से कम कि का वजह हुई है, हो ही सकत है।
1: तो कहे मतलब का हम कुछ समाधान नहीं करी थे, हम लड़े तैयार रही थे, तर्क बितर्क आप ढूंढती हो
0: नहीं।
1: अच्छा चलो हम लोग शुरू ना करा जाए, वैसे भी अबे कहीं नहीं बढ़िया लगा
0: था, सही बात
1: है, हम ज्यादा करे लागे,
0: यही तो लोगन में यहाँ जी सब साथी लोगन का रियलिटी दिखने लगा था।
1: संगीत के तरफ सखी, अब रेल चला था तो रेल का भी तो देख लीन जाए, कोठे के ऊपर कस के रेल चला था।
0: हाँ वो तो बात सही है।
1: हाँ, लेकिन आपका कुछ कहा है को कहो?
0: नहीं सोचित रहे कि तनी एक फोन और ले लिया जाते,
1: एक फोन और ले लिया।
0: हाँ अब जो है फोनिंग प्रोग्राम है। अच्छा। और फोनिंग के प्रोग्राम में यहाँ सब लोग तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि जो है अब हम बात करी कार्यक्रम में यहाँ। वैसे तो महीना में यहाँ आखिरी शनिवार के तो फोनिंग तो प्रोग्राम रहा था,
1: घंटी बाजी तब उठावा जाए ना कि आप सहारा देखो, तो पहले फोन आए जाए तब चला जाए गीत संगीत तरह।
0: अच्छा सखी एक बात बताओ
1: है ना, आप दो चार ठो बात पूछ लो,
0: अभी है टाइम, यही बार थोड़ा पूछ।
1: हाँ तो पूछ।
0: अब जहाँ अब टाइम ना होते ना तो हम कहते खुदे
1: हाँ तो बताओ,
0: लेकिन अभी भूल जाइए का वही मारे पूछ ली।
1: बताओ आप कौन
0: तो सखी दर और खायो कहीं गयो
1: दर? हम दर मतलब हाँ खाए दर खावा का हाँ। और जो घर में डेली बनाओ जाते है वो खावा जाते है तो सखी सहेली मिलके खावा।
0: लेकिन सखी एक बात बताई, 5 साल तरीके से तो नहीं है, है ना माहौल के हिसाब से असो जो है।
1: आप इससे पहले हम लोग कार्यक्रम चलावा कर रहा सनिचर पहले ने कहा गया रहा है आप 6 साल थोड़ा ऐसा समय पर ऐसा दुर्घटना हुआ है अपने देश में जिसके कारण से बहुत से जगह
0: सब लोग दुखी भी हैं।
1: जो कुछ जो एक ठोरी जो संघ संस्था के कुछ पैसा होते हैं या एक दूसरे का हम लोग खर्च करा जाते हैं वो का फिर हम लोग कोई कोई दान में भी दिया गया है। हमारे अब से थोड़ा ये समस्या कम हुई गवा
0: समस्या। हाँ वही बात हम कहे चाहे इतना मतलब सोचित रहे कि आप थोड़ा बताओ का कि पता नहीं अब जो है रमझम आई हो यही हमारे पूछे
1: फिर ले लास्ट एक तरफ गीत संगीत सुना के तो श्रोता
0: चलो ठीक है
1: अच्छा हम इन खाली आए हैं ये नए आई है और ये वैसे लाल मिर्ची लगा थी हम तो मतलब लगते हैं हम ना कह रहे अपने आप का लेकिन सखी बेर बेर का निकारा थी बात का अब करे क्या चाहे पर ये बताओ क्या करे चाहिए।
0: अरे सखी
1: कजरी तीज है।
0: हाँ सखी वो तो है अब सादगी से पूजा पाठ करा जाए कहे कि अब
1: सादगी से पूजा पाठ।
0: अरे परसों तो है ना कजरी तीज।
1: हाँ
0: वही तो अच्छा से करा जाए हम लोग
1: पूजा पाठ तो जो नियम विधि विधान हो
0: विधि विधान से करा जाए
1: और वैसे भी अखंड जो हम लोग के 24 घंटा के कजरी तीज व्रत उपवास होता है बड़ा कठिन है रहा है कहा ऐसे जैसे रात के 12 बजे से शुरू हुआ तो फिर सवेरे 4 बजे तक दूसरे दिन सवेरे 4 बजे तक खत्म होता है तो सवेरे पूजा पाठ करके तब पानी पिया जाता है। लेकिन
0: 24 घंटा के व्रत रहा
1: है सखी कहती यही समस्या होगा कि एक व्रत खत्म कहके दूसर व्रत फिर उधर शुरू हो जाए अब से तो ऋष पंचमी भी दूसरे दिन है।
0: हाँ ऋष पंचमी और उसके बाद पता है सखी कुछ दिन के बाद मतलब यही महीना मैया है ना नहीं असोज कुवार के महीना मैया हाँ। कुवार के महीना मैया फिर बाद मैया नवरात्र के व्रत शुरू हो जाइए।
1: अच्छा
0: सखी अच्छा ठीक है
1: बात कारण कुछ जरूर
0: बात ही है का अब हमारे दिमाग में आवा है हम सोचे थे की पूछी थाली
1: बीच के पीतर ना खत्म हो दे नवरात्र पहले पहुंच जाइयो
0: नहीं वो तो बीच में
1: ही चलो आपका जहाँ चले
0: चलो ठीक है चलो आप चला जाए 2 बजे के टाइम चेक के तरफ चला जाए का वही
1: अच्छा
0: हाँ
1: ये मारे हम कितनी देर से रोके रही हूँ चलो चलो चला जाए और का

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाए तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037
5: नींद ना हमको हाय जग सोना
3: है भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है
3: सही हुआ का सेवा मिलत है तो भैया
6: सुनो हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है
7: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तह दिल हुआ जाए
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9769411786 9822942377 सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य
8: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज
9: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ
8: स्थान राजा चौक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाड़ी
9: संपर्क 9705118470
8: सोफा हब नेपालगंज
9: विश्वास में नंबर 1
8: क्वालिटी में सबै भन्दा बेस्ट
3: खुशी के खबर हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है
6: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज
6: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
6: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज
6: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है
6: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हरेक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है
3: नोट ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है
6: संपर्क नंबर 9081536465 9829408665 और 9842808465

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

थे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी?

0: सखी कहाँ है राय गिरो, हम तो जानें कि आप जो है हमका छोड़ के चले गए हो कहीं इधर खायो।
1: का है बाजी हो पहले ही बताओ,
0: हम बाजे ना हैं।
1: करत का हो आपके, का हाल चाल है, यही थिर रही हो?
0: हाँ यही थिर रहे, हम सहारा देखित रहे आपके, कब आओ कब बात करी आपसे। हाँ, हम
1: ठीक है तो आप बात करो, कैसे कुछ सोचे बैठे हुई हो, तभी सखी का ढूंढत हूँ, तो फिर शुरू करो बात करो आप, और हम तो जाइत रहे कि कहन कजरी तेज है सखी।
0: अच्छा सखी चलो ठीक है अब। हाँ
1: तो कुछ सामानों मन लाग पड़ा पूजा पाठ के।
0: अच्छा वही गई रही हूँ का?
1: हाँ वही मारे गई रही।
0: अच्छा लो चलो,
1: तो कोई सुनी ले वही मारे श्रोता फोनो में आएंगे कहीं बात करा जाए, झगड़ा ना करे। ठीक है चलो।
2: हेलो
0: हेलो
2: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते जी, को कहाँ से?
2: जी नमस्ते, अरे हम यहाँ भवानी बाग वाला नंबर 11 से राजीव मौर्या जी बोल रहे हैं।
0: राजीव
1: नमस्कार, नमस्कार राजू भाई, और क्या हाल चाल है राजू भाई?
2: हाँ दीदी सब अच्छा है, मौसम भी बढ़िया है, धूप निकला हुआ
1: है। मौसम बढ़िया है कि बहुत गर्म किए
2: धूप ज्यादा तेज निकला
1: है? हाँ आज बहुत तेज धूप निकला है। तो और सब हाल चाल ठीक है?
2: हाँ सब बढ़िया है, सब लोग का ही आवे वाला तीज के हार्दिक मंगलमय, ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद है आपका भी।
1: हाँ ऐसा किसी सारे एफएम परिवार से और कार्यक्रम घर अंगना के परिवार से और हम लोग दोनों सखी आप लोगों के घर परिवार का, दीदी बहनी लोगन का, सबका हार्दिक शुभकामना है कजरी तीज और साथ ही ऋषि पंचमी के।
2: जी कार्यक्रम अच्छा लगा था, हम हमेशा सुना करी थे क्या?
1: हाँ तो आप लोगों का अच्छा लगे, आप लोगों के साथ मिले, बस हम लोग का और का चाहिए।
2: मिया जी के भी कार्यक्रम अच्छा लगा था, मिया जी के पास कल गए रहन घर पर उनके हम अच्छा। मुलाकात करने के लिए। हाँ
1: तो ये तो ना इंसाफी हुआ, आप मिया जी के घर पर गए हो, मिले गए हो, हम लोग दोनों सखी से आप काहे नहीं मिले आए?
2: मैं तो वहाँ स्टूडियो में भी तो आई थे, इनाम उनाम जीती थी तो वहाँ आवाज पड़ा था।
1: अच्छा, तो हाँ, बात ही है कि हाँ उमा थोड़ा
0: अच्छा, इनाम के जरिए से चले आवत है का, वही बहाना से। हाँ
1: तो हम लोगों से भेंट घाट करे का ना, उमा तो इनाम में आवाज आते।
0: लेकिन लेकिन राजीव जी ये समझ में ना आवा, आप इनाम के खातिर तो ऑफिस में आवाज आते है नहीं, लेकिन घर तक पहुँच गए
1: भाई, झगड़ा देखो यही शुरू होगा, देखेगा कि ऐसा झगड़ा शुरू हो जाता
2: है। दीदी जी कार्यक्रम बराबर चलावा जाना, आपने पहले फोन इन कार्यक्रम आवत रहा, कितना अच्छा अच्छा प्रोग्राम
1: है। बात शिकायत तो बहुत
0: ठीक है राजीव जी, चलावा जाए बस, अब कुछ
2: प्रतिभा वाला कार्यक्रम भी आवत रहा, वो सब बंद हो गया।
1: हाँ अब इनके ज्यादा कुछ मूड ज्यादा ही पिरा लगा, प्रेशर उसे के मशीन उसे लावे पर
2: चेक कर भी गीत वाला आवत रहा बुधवार के, वो भी बंद हो गया।
1: ठीक है कोई बात नहीं है,
0: बंद नहीं हुआ है, अब शुरू हो जाइए।
1: अब वो हमेशा ये कहते हैं अब शुरू हो
2: जाइए। आवाज में कोई गीत सुनाई दिया?
0: कौन सा गीत, कौन सा गीत?
2: अरे कोई भी गीत, मनोज तिवारी का तो बहुत
0: कोई भी गीत,
2: बड़ा पैसा वाला फिल्म के सुना दिया।
0: हां ससुरा बड़ा पैसा वाला,
1: आप सुनावे का चाहा जाते हैं
2: जी? अब सुनाई दिया जाए, हम बहुत दिन के बाद कॉल करे हैं आपके पास, मिया जी का फोन करा के।
1: ठीक है तो जैसे आपके दोस्त यार कोई हुई है जिसका सुनावे चाहा जाते हैं, नाम भी बतावा जाए।
2: अब हमारे नाम से जितने लोग जाना पे पहचाना, जितने लोग रेडियो भी सारे हमको ट्यून करके अभी सुन रहे हैं गाँव एरिया में, इंडिया में, नेपाल में, हर जगह, सभी को सुनाना चाहते हैं।
1: ठीक है चलो धन्यवाद है आपका,
0: धन्यवाद।
1: और कजरी तीज और ऋषि पंचमी और घर परिवार कैसे 7 दिन जाए बढ़िया से मनावा जाए, घर परिवार में खुशहाली मनावा जाए। और अब के बजे वाला गीत आपका पहचान करे वाले, आपका जाने वाले संपूर्ण श्रोता लोग आप लोग जरूर सुना जाए और हम लोग भी ध्यान से सुना जाए। धन्यवाद है, नमस्कार।
0: नमस्कार राजीव जी,
2: नमस्कार।
1: हाँ सखी,
0: हाँ सखी
1: बड़े शांत से, हाँ सखी कहे हो क्या बात है? तो ठीक है चला जाए हम लोग गीत संगीत के तरफ।
0: सखी पहले व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए।
1: बढ़िया फतेह, चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ, फिर आवाज ही कार्यक्रम गीत सुनते ही आवाज ही।
0: ठीक है
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौंपछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो। अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
6: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
7: नमस्ते दाई।
8: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
7: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
8: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
9: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
10: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
11: हाम्रा विशेषताहरू:
10: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
11: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा।
10: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
11: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबिएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
11: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
10: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
11: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
10: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
12: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन। के गर्ने होला?
13: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
12: कस्तो होटेल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
13: किन नहुनु? ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
12: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
13: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20, राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98-487-56-466।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: चलो आते खन फिर फोन बज गया है, फोन उठावा
1: तो बातचीत कर लिया जाए।
0: ठीक है चलो। हेलो हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। को बोला जाते, कहाँ से बोला जाते? हाँ नमस्कार,
2: हम बड्डू सलमानी बोली थे।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल चाल है?
2: पहचान लो।
0: हाँ आपका पहचान गए, बढ़िया से पहचान गए।
2: एकदम
0: बढ़िया से पहचान गए, लेकिन आप बताए दिन जाए कि आप कहाँ से बोला जाते हैं।
2: कार्यक्रम थोड़ा अच्छा लगा था, आपके गाना सुना दो भाई हमने।
0: अच्छा गाना, आप तो पुरानी गाना सुना जाए।
2: जब दिल से दिल टकराता है मत पूछिए क्या हो जाता।
0: अच्छा जब दिल से दिल टकराता है,
1: दिल से दिल टकराता है।
0: अच्छा तो आप कहाँ से फोन?
2: दिलीप कुमार के।
0: ठीक है ढूंढा जाते हैं, लेकिन आप कहाँ से करागा बताए दिन जाए, और लोग भी तो सुने कि आप कहाँ से फोन करागा।
2: हाँ सब सुनिए भाई, बड्डू सलमानी होई।
0: हाँ
2: जहाँ बाल बाल कटिंग होता है।
0: एक लाइन ही लाइन से है।
2: एक लाइन ही लाइन।
0: हाँ बस, और सब हाल चाल ठीक है आपके?
2: हाँ ठीक है, अपना सुनाइए।
0: सब ठीक है ठीक है, तो अब बजे वाला गीत जरूर सुना जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: बस सुना सुना दिया जाए भाई, आपके कार्यक्रम अच्छा लगा तो सुनी था मेरे छोटा मोबाइल है सुनी को।
0: अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार
2: रखा जाए।
0: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार
0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: तो आज तो गाना के फरमाइश ऐसे से आए रहे हैं कि बहुत पुरान बहुत नवा और बीच के भी है नहीं? अब गाना के तो समस्या आप ही जानो।
1: समस्या थी? समस्या कोई नहीं है, समाधान है।
0: और जो जैसे बड्डू जी फोन करी ना है, ये हम जानी थे कि ये सब जने पुरानी गाना सुनत हैं। और
1: तो ठीक है सुनाए दीजिए।
0: हाँ तो ठीक है, तो चला जाए गीत संगीत
1: के
0: तरफ।
1: अभी सखी व्यापारिक विश्राम के तरफ चला जाए, समय हो चुका है, इसके बाद गीत सुना दिया जी।
0: बस हम सखी से सलाह लेक परत है भाई, कैसे व्यापारिक विश्राम बीच में हड्डी बने आए जाते, तो चला जाए हम लोग व्यापारिक विश्राम तरफ।
1: ठीक
3: हाय के गर्ने होला, अब सुगर पनि बढ्दै छ, थायराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
4: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
3: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
4: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
3: कस्तो खबर?
4: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
3: ए साँच्चै?
4: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
3: ए त्यो त झन् राम्रो
4: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य एमबीबीएस, एमडी केयु, आईभीएफ स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबीबीएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
3: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
4: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
3: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
4: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आज गइहाल उपचार गर्न।
3: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
4: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
5: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
6: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
7: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
7: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
8: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
7: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
8: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 081535717।
9: बाबा के कान पीरा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। यत्न कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआव, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
9: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583-697 और 98014-83697।
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
12: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
10: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ ही तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
12: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
12: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
12: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
10: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
12: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
10: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
12: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
10: संपर्क नंबर 081536465, 98239-80665 और 98482-80465।
13: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर

0: बाबा।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री IBF हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री IBF क्लिनिक सोल्टी मोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
4: रेडियो कृष्णसार FM 94 MHz, कृष्णसार जस तेज।
5: शिमारू फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: कहाँ रे आगे इतना बड़ा बोतल पानी के कहे आप रख दिए हो?
1: हम
0: तब को रखे
1: ये खातिर का आप इतना बोला तो सुखाएगा हुई गला पी लियो।
0: अच्छा
1: हाँ अब परसों देखो
0: गुस्सा कजरी
1: कजरी कजरी तीज है ना परसों।
0: हाँ।
1: तो बिना पानी के रहियो आज पी लो
0: पूरा पी ली।
1: हाँ परसों के खातिर भी
0: जैसे डॉक्टर के पास जाओ अगर बीमार हो दवाई दे। हाँ। तो अगर 5 दिन के दवाई दे तो 1 दिन खाई लो।
1: हाँ

0: अभी बात पर फिर फोन
1: एक के दिन मंगा हाँ, हाँ,
0: कहे हो आप
1: ना। अरे हम कुछ और देखो फोन आएगा रखा हमारे ध्यान उधर रहेगा
0: तो फोन का श्रोता हम लोग का बचा ही नहीं है झगड़ा से
1: फोन आवा है। हाँ यही मारे कहे लो। हेलो
2: राधे राधे जय सियाराम।
1: राधे राधे जय सियाराम।
2: जुड़वा छा बल्दीपुरवा हिरमिनिया से बोली था नाम
1: जी। आपके शुभ नाम?
2: सरबजीत यादव नाम है।
1: सरबजीत यादव जी
0: नमस्कार है। नमस्कार आपका।
2: नमस्कार आप राधे राधे।
0: राधे राधे। और अति दूर से आप बोला जाते ठिकाना पहले ने बताया दिन का बहुत बढ़िया कर रखा है। और पहले तो आप बताओ
2: कार्यक्रम सुनित रहे हम का
0: तो आपका कार्यक्रम कस लागत है? कार्यक्रम ये घर अंगना हम लोग घर में हन की नहीं हन पहले बतावा जाए।
2: बहुत अच्छा लागत है कार्यक्रम। घर में तो बैठे ना आप लोग बैठे हो तो घर में तो बैठे ना आप।
0: हाँ तो ठीक है अभी कार्यक्रम के बारे में कुछ थोड़ा बताए दिन जात की जैसे और सुधार करे खातिर का करे के चाहिए कुछ आपके सर सलाह व्यक्तिगत।
2: सर सलाह तो हंसी मजाक होते रहते झगड़ा करा जाता है वो चाहे लगते है कार्यक्रम और अच्छा बनावा जाए तो और बढ़िया है।
0: हाँ बस ये झगड़ा एक समस्या ज्यादा है जितने हम लोग झगड़ा कम करे चाहिए थे।
1: तो फिर आपके क्या विचार है सरबजीत जी कि मतलब झगड़ा ठीक है कि नहीं कि ना करा जाए है ना झगड़ा करा नहीं जाए वही तो
2: झगड़ा ना ठीक चीज होते।
1: हाँ बिल्कुल
0: होते। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका।
1: हाँ वही तो सरबजीत जी आपका है माहौल ही हो जाता
0: आपके पास सुन के हमारे सखी छुपाए जाए कि झगड़ा करे बच जाए
1: ऐसा। अब कहा है कि माहौल बन जाते सखी है ना वही मारे का
0: ठीक है। तब तीज के शायद कजरी तीज के मौसम है आवे वाले सोमवार के कजरी तीज है तो
2: आप तो हम तो कहे कि महिला व्रत रही है अच्छा से मनावे तीज नाच गान कार्यक्रम बढ़िया से मनावे। हाँ, अच्छा से
0: ठीक है। तो आपका भी कजरी तीज के बहुत बहुत शुभकामना है।
1: बहुत शुभकामना है आपका भी
0: और घर परिवार में सबका सहयोग करा जाए कहे से व्रत उपवास बड़ा कठिन रहा थे तो आप लोग भी तो घर परिवार में सहयोग करे पड़ा तो वही साथे साथे आपके बजे वाला गीत की का सुनावे चाहत है।
2: सबसे पहले आपको चंदा बहनी का हम मित्र को बैठा हो संचालक मा
0: संचालक मा चंदे बहनी बैठी है।
2: अच्छा तो उनका सुनावा चाहे वो तो पहचानते हैं हमें।
1: हाँ पहचानित है ना आप हमारे कार्यक्रम के नियमित श्रोता हुआ जाते
0: तो
2: राधे राधे
1: राधे राधे
0: गीत के बोल तो हम लोग पूछबे नहीं करे ना आपसे। ठीक है और का तो बजा लगी जरूर सुना जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार राधे राधे।
1: राधे राधे सखी
0: थक गयो सखी
1: ना थके कहाँ है ना।
0: और राधे राधे अभी तो हम लोग के बहुत जगह छठी चलतो है सखी।
1: हाँ वही तो छठी चलत है।
0: हाँ।
1: तो सखी
0: हाँ
1: ठीक है व्यापारी विश्राम के तरफ चला जाए है ना।
0: आप बहुत थक गई हो लागत
1: थके नहीं है अब का किया जा सके अब व्यापारी विश्राम के भी तो टाइम हो चुका है ना।
0: हाँ बात तो सही है और उस कार्यक्रम में भी हम लोग बोलते हैं
1: विज्ञापन दाता लोगन का भी सहारा होते कि हमार अब बजी विज्ञापन।
0: हाँ और ये दोनों सखी लड़ाई के बीच में हमारे लोग के विज्ञापन बजाओ भूल जाती यही कही सकते हैं।
1: अच्छा कही सकते हैं
0: कही सकते
1: हम जाने की आप कही हो
0: ना बात तो सुना।
1: हाँ सही बात है कही सकते हैं
0: आज जत्ते हमारे लोग के बड़ाई प्रशंसा कोई कही देते तत्ते हम लोग लड़ाई और शुरू कई दिन जाते ज्यादा ध्यान से पहले एकदम गौर दिया मन शांत कह के बात सुना करोगा पूरा ठीक।
1: अच्छा ठीक है सुन चुके हैं अब चला जाए।
0: हाँ अब चला जाए
1: ठीक है।

0: सखी
1: हाँ सखी,
0: अब हमारे लोग के झगड़ा बंद हुई गवा एक हफ्ता का तीर, अब हम लोग के विदा लेक समय आएगा है। कत्ते बढ़िया से प्यार से मुस्कान दही ने बताओ,
1: तो अब
0: विदा लेक समय आएगा। अब आपका कहे ना कि अब एक हफ्ता का तीर बंद हुई गवा है, अब टेंशन न लियो, आप ज़्यादा चिंता न लियो, अब छोड़ो एक हफ्ता का तीर छोड़ दो, 7 दिन तो हो, ज़्यादा दिन कहाँ, 2-4 दिन तो बर्त उपवास मसला जाए, उसके बाद फिर आवे के थोड़ा एनर्जी कम हो जाए तो खाई पी के अब बढ़िया पानी वानी पी के तब आवा जाए। अश्रोता आप लोग भी तब तक बढ़िया से शांत रहा जाए, है नी, अब समय खत्म हो गया है और हमारे सखी का भी शांत करें,
1: हम शांत हो चुके हैं काहे कि एक हफ्ता खातिर खाली
0: बस। तो श्रोता आप लोग जाना जाते कार्यक्रम 1:00 से 3:00 बजे तक रहत रहा, तो 3 बजे वाला है, आप लोग से विदा लेक समय आए गवा है। तो विदा ले से पहले सखी है नी कि हमारे लोगों के आज तीज के बाद जो तीज के थोड़ा बहुत जानकारी तो नहीं दे पावागा, लेकिन तीज के बारे में उपलब्ध आज फोन इन कार्यक्रम भी रहा है जो महीना के अंतिम शनिचर के हम लोग करा जाते हैं, तो सब एक के माँ हमारे लोग के मिल गवा घमंजा हुई गवा। अभी घमंजा के साथ साथ अभी घमंजा आप लोगन का दई के हम लोग विदा लेक चाहा जाते हैं। तो इससे पहले आप लोगन का कजरी तीज के और साथ ही ऋषि पंचमी के हार्दिक मंगलमय शुभकामना संपूर्ण हमारे सखी लोगन का, हमारे दीदी बहनी सबका, और बढ़िया से आप लोगन के कजरी तीज उपवास हुए, बढ़िया से मनावा जाए, जगराता करा जाए, भजन करा जाए, गीत संगीत करा जाए, और यही के साथ ही अपने आप का भी जरूर ध्यान दिया जाए, काहे से जो शरीर में समस्या है उपवास करा जाए तो हिसाब से अपने शरीर का भी देखा जाए, काहे से बहुत जना का स्वास्थ्य समस्या हो कारण भी उपवास रखा जाता है तो थोड़ा बीमारी की समस्या भी हो सकता है, यही कारण से अपने आप का जरूर ध्यान दिया जाए, यही कहते अब हम लोग विदा लिया जाता है। तो प्राधिक मम्रे सखी आज रही जो कि फोन इन के फरमाइश के हिसाब से गीत संगीत सुनाई है, तो आपका भी सखी कजरी तीज के ऋषि पंचमी के हार्दिक मंगल में शुभकामना और गीत संगीत कतिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सखी आपका भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना,
0: धन्यवाद
1: कजरी तीज के और ऋषि पंचमी के।
0: हाँ तो अब क्या करा जाए, सारे सखी लोगन का एक दूसरे का शुभकामना है और बड़े ध्यान से सखी आप भी बड़े ध्यान से अपने आप का कंट्रोल करके बढ़िया से व्रत उपवास करा जाए। अब हम लोग विदा लिया जाए,
1: ठीक है, एक हफ्ता तक कंट्रोल करें हैं, ठीक है।
0: हाँ, हाँ। तो रेडियो कृष्ण सार FM सुनते रहा जी, अभी हम लोग खाली घर अंगना से विदा लीन जाते हैं, बाकी FM आप लोग सुनते रहा जी, अगले हफ्ता तक फिर हम लोग एकदम शांत होके जाए थे, फिर आवा जाइए आप लोग इनका तिर हल्ला करें। तो नमस्कार
1: नमस्कार,
0: राम राम, शुभ दिन, शुभ कजरी तीज,
1: शुभ कजरी तीज।

0: ఉదయ్ దేశ్, మీరు ఎవరెస్ట్.
1: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ.
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने.
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ.
3: फोन नम्बर 081-532-375.
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका.
5: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए. वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है. उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है.
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है.
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए. संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड, नेपालगंज, बांके. संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37.
6: नींद ना आए हमको, हाय जग सोना
4: है. बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना. यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है. यतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं. और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है. साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है. बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है.
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो.
7: हाँ तो समय में दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है. बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज, फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके. संचालक पूरन चौधरी. संपर्क नंबर 9848-20-697, 9850-23-697 और 9814-83-697.
8: वृक्षारोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए.
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही.
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए. वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है. अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है.
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है. और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है.
9: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं. आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहदिल हुआ जाए.
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back.
12: In this song
11: on.

0: back to back, back to back.
1: Hindi song on.
0: Stay tuned.
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी